0: नमस्कार, म पत्रकार तथा गीतकार शशि शर्मा मझैया। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ राप्तीको पहिलो अनलाइन रेडियो, रेडियो नमस्ते। www.radionamaste.org।
1: ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सजा दूंगी मैं।